Beautiful song, wonderful song, Shrutawani, suna ai de film Zindagi, Ravi Sahab ji ke beautiful awaz mein. अगला बयान एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी एक फिल्म जिंदगी हम प्यार का सौदा करते हैं.

थे दिल को छू लेने वाला नगमा हमने जफाना सीखी एड फिल्म जिंदगी नीटी फिल्म सेस्तक सुरों का बादशाह रफी साहब जी तुम्हारे ये साथियों कुछ शेयर्स हो जाए ना हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए अर्ज किया है कुछ दोस्ती के बारे में शेयर्स यारो की जाने वो क्या सोच रही थी अपने दिल में सारी रात जाने वो क्या सोच रही थी अपने दिल में सारी रात प्यार की बातें करते करते उसके नैन भर आए थे मत सोना किसी के कंधे पर सर रख कर ऐ दोस्त मत सोना किसी के कंधे पर सर रख कर ऐ दोस्त क्योंकि जब वो बिछड़ता है तो फिर तकिए पर भी नींद नहीं आती यारो तुमसे अच्छी तो तुम्हारी यादें और तस्वीर ही है तुमसे अच्छी तो तुम्हारे यादें और तस्वीर ही है जिनको जब दिल चाहे जब जिनको जब दिल चाहे बुला लूं और जब दिल करे गले से भी लगा लूं माना जमाना ये देता है ताना कि थोड़ा आवारा हम हैं माना जमाना ये देता है ताना कि थोड़ा आवारा हूं मैं लेकिन जब हम जैसा हूं लेकिन जब हम जैसे हूं अब तो तुम्हारा हूं मैं और सदा ही रहेगा।

सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक झलक चाहिए तुम्हारा पीछा करने के लिए। मुझे आदत नहीं कहीं इतनी देर रुकने पर, मुझे आदत नहीं इतनी देर कहीं रुकने पर, तेरे दर्शन होते हो मेरे पांव मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, तेरे दर्शन होते ही मेरे पांव मुझे आगे बढ़ने नहीं देते। ये भी होती है। तो ये था कुछ शेर्स। आगे के प्रोग्राम में कुछ कोशिश करूंगा और सुनने के लिए। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम द मूवी जिंदगी। इस बार एक डुएट तो नहीं कह सकता हूं क्योंकि कुछ अल्फाजे सिर्फ आप रफी साहब जी के मधुर आवाज में सुनेंगे और बाकी गाने तो लता जी सुनेंगी आप सभी को कोरस के साथ शंकर जय के साज पर। मिलके सुनते हैं ये ब्यूटीफुल सॉन्ग। हम दिल का कमल देंगे। क्या बात है।

क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जिंदगी, लता जी और साथियों के साथ। और अति सुंदर बयान थोड़ा क्लासिकल स्टाइल में आप सुनेंगे। और एक बार फिर सुरों का बादशाह रफी साहब और आशा भोसले जी मिलकर सुनाते हैं घुंघरवा मोरा छम छम बाजे, अ मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय शंकर जयकिशन और लिखा है हसरत जयपुरी।

ब्यूटीफुल सॉन्ग, वंडरफुल सॉन्ग, घुंघरवा मोरा छम छम बाजे। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। प्यार की दुल्हन सदा सुहागन, एक बार फिर ये अति सुंदर बयान को सुनाने वाली है आप सभी के लिए। मिल के सुनते हैं शंकर जय किशन के साज पर ये अति सुंदर बयान की प्यार की दुल्हन सदा सुहागन।

एक और महान गायक को ला रहा हूं प्रोग्राम में, पद्म भूषण मन्ना दा इस बार प्रोग्राम में एड फिल्म जिंदगी, और वो सुनाते हैं आप सभी को मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मन्ना दा जी के ब्यूटीफुल आवाज में एड फिल्म जिंदगी शंकर जय किशन के सांझ पर। छूने ना दूंगी मैं दोनों बहने, क्या बात है। लता जी और आशा भोसले जी टुगेदर मिलके सुनाते हैं छूने ना दूंगी मैं, शंकर जय किशन के साथ पर जिंदगी द मूवीज द मूवी।

0: चली। शादी मुबारक, तुम हमेशा खुश रहो।
1: गोपाल, आपने हमेशा मुझे खुश रहने का आशीर्वाद दिया है। मेरे जीवन में ये खुशी सदा बनी रहे, उसके लिए अब मुझे आपकी मदद चाहिए।
0: मदद मेरी? बोलो बिना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?
1: भगवान के लिए आज के बाद आप मुझसे मिलने या मुझसे बात करने की कभी कोशिश न करें और उसकी वजह मत पूछिए।
2: गोपाल साहब
0: जी,
2: बस उधर ही देखते रहोगे?
0: हाँ हाँ,
2: देखते रहो, खूब देखते रहो, लेकिन कुछ ख्याल हमारा भी रखना।

ब्यूटीफुल सॉन्ग छूने ना दूंगी मैं आशा और लता जी दोनों बहनें ने मिलकर ये थी सुंदर बयान को आप श्रोताओं के सामने पेश की एंड फिल्म जिंदगी शंकर जय किशन की सांच पर। एक आखिरी बयान आप सुनेंगे एंड फिल्म जिंदगी एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी एक नई मेहमान विद कोर्स के साथ।

0: तेरी फिल्म जिंदगी लता मंगेशकर विद कोरस के साथ मैस्ट्रो महान संगीतकार जोरी डगड़े शंकर जयकिशन के साथ पर। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं सभी नगमे आप सुन चुके हैं फिल्म जिंदगी का, अब आप सुनेंगे कुछ विज्ञापन और कमर्शियल्स। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जाना मत, जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, क्योंकि आप जब सुनते हैं तो हम लोग भी और जोर तोर से कोशिश करते हैं कुछ सुपरहिट सॉन्ग्स सेलेक्ट कर करके आप सभी को सुनाने के लिए। तो ब्रेक के बाद मिलता हूँ, स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो ये आवाज़ है, जनता का आवाज़ है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज़ है। आफ्टर द ब्रेक
1: प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं एक बार फिर से स्वागतम। वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड नतिलक बदंत सो सो लोबी लोबी अंत ब्लेसिंग्स। जो भी रेडियो का काम हो देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो सभी जानकारी 9703562247 दफ्तर कतार का नंबर स्टूडियो कतार का नंबर 9703562277 पर आप तार करके सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इश्तिहारे खास फरमाइशे या जरूरी खबरें के बारे में तो जो भी रेडियो का काम हो देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यार, चर्चा करते रहना फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के बारे में। इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने एकदम प्रोग्राम की तरफ लेकर चलते हैं आप श्रोताओं को। हम पहुंच चुके थे फिल्म संगम तक और उसी फिल्म में से नगमे चल रहे हैं। अगला बयान बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनने को जा रहे हैं आप सभी को। लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्ट रब ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी साथ दे रही है। कुछ आवाजें सुनेंगे विजयंती माला जी के, मिलकर सुनते हैं।

ब्यूटीफुल सॉन्ग बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, फ्रॉम द मूवी संगम टाइटल सॉन्ग uit 1964. Lako Karol Kadil Churani Wala De Mighty Mukesh Dike Beautiful Awas Me, composed by Shankar Jai Kishan Aur Alfazit He Hazrat Jai Puri Jika. Agla Bayaan Ek Aur Jabarjas Song from the movie Sangam. सभी गाने इस फिल्म का सुपरहिट साबित हुए. ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर एक बार फिर सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी साथ दे रही है लता मंगेशकर जी.

प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाया आप सभी को, सुर का बादशाह द क्वीन द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी, और थोड़ा बहुत साथ दे रही थी लता मंगेशकर जी। शंकर जय किशन के सांच पर अगला बयान सुनाने से पहले कुछ आखिरी शेर्स हो जाए यारो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। फॉर द शेर्स लॉफर्स, अर्ज क्या है यारो की ये तो ये जो जनाब है ये तो खुदा से भी लड़ना चाहता है यारो। अर्ज किया है कि कभी फुर्सत से हिसाब करेंगे तुझसे ऐ खुदा, कभी फुर्सत से हिसाब करेंगे तुझसे ऐ खुदा, कि मैंने गुनाह ज्यादा किया या तूने जख्म ज्यादा दिए। नींद तो क्या आएगी यारो, नींद तो क्या आएगी यारो, मौत आई तो सो लेंगे कुछ ना किसी से बोलेंगे क्यों भाई। होश हालात पर काबू तो कर लिया मैंने, होश हालात पे काबू तो कर लिया मैंने, उन्हें देखे फिर होश खो गए तो क्या होगा यारो। दिल करता है कि लिपट जाऊं रूह बन कर तेरे जिस्म से, दिल करता है कि लिपट जाऊं रूह बन कर तेरे जिस्म से, कि जब तुमसे जुदा हो, कि जब तुमसे जुदा हो तो तेरी जान ही निकल जाए। आखिरी शेर, जो लोग आपस में हम हम करके बात करते हैं ना, जो लोग आपस में हम हम करके बात करते हैं, वो एक दूसरे के हम दर्द होते हैं यारो। ये था कुछ आखिरी शेर्स। अगला बयान ओ महबूबा, ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी संगम निगरी फिरंसेस्त। एक बार फिर लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्ट थ्रॉब ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश ओ महबूबा, शंकर जय किशन के मास्टर पीस ऑफ कंपोजिंग मुकेश जी के ब्यूटीफुल आवाज में। आई लव दिस सॉन्ग।

Shurani Wala, the heartthrob of millions, the mighty Mukesh, you can beautiful amongst me, it is under my own eyes, but now in Shunai, the film Sangam 1964. अब जरा दिल थाम के बैठिए हमारे प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर वही महान गायक द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश, जो लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला था और जिसे हम लोग रोजाना भी याद करते हैं और करते रहेंगे, ऐसा गायक वो था जो अभी कितने लोगों के दिलों में बसा है, वही महान गायक द माइटी मुकेश का ये जबरदस्त सॉन्ग जरा दिल थाम के बैठिए कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। अ मास्टरपीस ऑफ कंपोजिशन बाय महान संगीतकार जोड़ी शंकर जय किशन, मिलके सुनते हैं। रोने को दिल चाहता है, बार बार जब ये नगमा मैं सुनता हूं तो दिल फट जाता है।

अरे ना रहा। अति सुंदर बयान श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया आइड फिल्म संगम 1964, लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस, द माइटी मुकेश जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। और साथ ही साथ आज का इस हसीन प्रोग्राम का ये आखिरी बयान था। देखते देखते वक्त भी करीब आ गया है यारो आप सभी से विदा लेने को। यही आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम कार्यक्रम आप श्रोताओं को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले दिनों में मैं आप सभी से फिर मिलने वाला हूं आवाज के जरिए। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, जहां पर भी हो जिस हाल में हो। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। तो हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ दिन हो मैट हेलफील्ड लाइस्टर प्लेजीर के साथ। तो मुझे आपसे भी इजाजत दे और जाते जाते हमेशा की तरह तो आदत से जो मजबूर हूं ना कुछ सुना देता हूं। तो मैं कोशिश करता हूं आज आप सभी को कुछ संगीत के साथ सुनाने को।

ऐसे कोई जाने भला ख्वाबों की ताबीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी तकदीर से आप सुनेंगे।

आप सुन रहे थे कैसे कोई जाने भला फ्रॉम द मूवी तकदीर से टाइटल अभी आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। हेमंत कुमार जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, फ्रॉम द मूवी प्यासा से हम पेश करते हैं, जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला।

0: जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी प्यासा से हमने पेश किए हैं हेमंत कुमार जी की आवाज में। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसी गगन के तले।
1: डिजिटल ऑडियो प्लेयर इस तोहफे में है 5।

अभी आप सुन रहे थे आ जाऊं कि तुझे मैं लेके चलूं। किशोर दा आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी दूर गगन की छाव में। किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई, किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किशोर दा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं,

अभी आप सुन रहे थे किशोर डा की आवाज में घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए। लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी जाने अनजाने।

मेरे चल गए, अभी आप सुन रहे थे तुमसे अच्छा कौन है, है फिल्म का नाम। और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

सुन रहे थे रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन की किसी में नहीं नहीं। फ्रॉम द मूवी तुमसे अच्छा कौन है, इसी फिल्म से हमने पेश की है लता और मोहम्मद रफी जी मिलकर आपको सुनाने वाले थे। मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, जब मोहब्बत जवान होती है।

अभी आप सुन रहे थे जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक जुबान होती है। अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती, मोहम्मद रफी जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बेटी, बेटे से।

जाने मन तुम कमाल करते हो, फ्रॉम द मूवी त्रिशूल से हम पेश करते हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

ये आप सुनते यानी सुने हैं जाने मन तुम कमाल करते हो, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह।

मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह भी आप सुन रहे थे। किशोरदा और लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी कर्श। आप सुनेंगे मैं 16 बरस की तुम 17 बरस का।

अभी आप सुन रहे थे गपुची गपुची गम गम फ्रॉम द मूवी त्रिशूल से हमने पेश किए हैं। छोड़ो भी ये नखरा, करो प्यार हमसे।

अभी आप सुन रहे थे छोड़ो भी ये नखरा, करो प्यार हमसे। एक रोज में तड़प कर बेमिसाल है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं।

फ्रॉम द मूवी बेमिसाल से आप सुन रहे थे किशोर दा की आवाज में एक रोज में तड़प कर। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिल रुबा मिले, निकाह है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं

भूमिका है, फिल्म का नाम इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं, दिल की ये आरजू थी कोई दिल रुबा मिले, महेंद्र कपूर जी के साथ में सलमा आगा जी आपको सुनाने वाले थे। तुम्हारा प्यार चाहिए

तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। अभी आप सुन रहे थे ऐसे ना मुझे तुम देखो, किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे ऐसे ना मुझे तुम देखो। हम दोनों मिलके कागज पे दिल दे चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा।

मुकेश और आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। हम दोनों मिलके कागज पे दिल दे चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। फ्रॉम द मूवी तुम्हारी कसम से हमने पेश किए हैं। अदालत है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं। वो तुमसे दूर रह के

आप पेश सुन रहे थे हो तुमसे दूर रह के फ्रॉम द मूवी अदालत से हमने पेश किए हैं सुन साइबा सुन।

दोस्तों, आग, पानी और विश्वास जंगल में साथ चल रहे थे। आग ने कहा, अगर तुम मुझे खो देंगे तो धुएं की तलाश करना, क्योंकि जहां धुआं है वहां आग है। पानी ने कहा, अगर तुम मुझे भी खो देंगे तो नमी, नमी माने फोख्त की तलाश करना, क्योंकि जहां नमी यानी फोख्त है वहां पानी है। मित्रों, तब विश्वास ने कहा कि अगर मैं खो जाऊं तो तलाश मत करना, तलाश मत करना, क्योंकि एक बार मुझे खो दोगे तो फिर मुझे कभी नहीं पाओगे। तो मित्रों, इसका निचोड़ है कि विश्वास कभी के ना तोड़ना, धोखा नहीं देना, नहीं देना बहुत बुरी बात है।

हम संसार के साथ कभी रह ही नहीं सकते और परमात्मा से अलग कभी हो ही नहीं सकते।

भाई बहनों, दूसरों की भलाई करना कोई कर्तव्य नहीं है, ये एक खुशी की बात है। ये आपके स्वयं के स्वास्थ्य और प्रसन्नता को बढ़ाता है, जिससे आप सकारात्मक शक्ति के बिना अनुभव करते हैं मित्रों, और दूसरों के लिए कई अच्छे काम करते रहना चाहते हैं।

0: भाई बहनों, हो सकता है कि आप कई चीजों में परफेक्ट ना हो, लेकिन आपके अपने छोटे छोटे तरीकों से खास बने बिना कई चीजों परफेक्ट नहीं हो सकती। इसीलिए सलाह दी जाती है कि पहले ये सोचे कि आप क्या करना और कहना चाहते हैं, जो आपको चरित्र और भविष्य को निर्धारित करता है। मित्रों, कृपया अपने और दूसरों के हित में इसे ध्यान में रखें।
1: धनी लोग दूसरे को नौकर बनाते हैं, पर संत लोग दूसरों को भी संत ही बनाते हैं।

कि भगवान का नाम लिए बगैर हमारा जीवन अंत में व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। और यही समझाने के लिए कुछ बड़े सुंदर

भरत से मिला रहे हैं सबको कि देखो इन सब ने वनवास में हमारी बड़ी सहायता की। और जब परिचय कराया

संसार की तरफ चलने वाले का कोई भी साथी नहीं होता, पर भगवान की तरफ चलने वाले के सब साथी हो जाते हैं।

भाइयों और बहनों, जहां साहस और परमात्मा साथ है, वहां कठिनाइयां व समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। यह मेरा और मेरी पत्नी राधा का

समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशवाणी रेडियो फाहुन के सुनने वालों, प्रिय भक्तजनों, प्रिय आत्माओं, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है। आज इस सुबह की कार्यक्रम में यहाँ पर आपकी सेविका उपस्थित है, अस्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम। नमस्कार हो जी। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। यहाँ से हम शुरुआत करने को जा रहे हैं आप ही का स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम।

तो आरंभ कर रही हूँ रोटरडाम होगफ्लीट टेक्सास वेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक माकरस्ट्रैट 46 से श्री सरस्वती माता भवन से सभापति मंडली सभापति पंडित राजकुमार महातम जी की तरफ से आप सभी को शुभ दिन शुभ प्रभात कहते हुए सुंदर हनुमान चालीसा से हम यहाँ से आरंभ

सुंदर हनुमान चालीसा से यहाँ से आरंभ किया गया है सुनने वालों, और वो भी रोटरडम होगफ्लीट टेक्सास वेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडम वेस्ट ब्लॉक मार्करस्ट्रैट 46 से श्री सरस्वती माता भवन से सभापति मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के जरिए से आप सभी को एक शुभ प्रभात ये सुंदर हनुमान चालीसा के साथ। और चलते हैं आपको लेकर सुनने वालों दनाखे इकनेतो स्त्रात नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरबीन के निर्देश में है श्रद्धा भक्ति के साथ।

0: चाहे बाबूजी।
1: जय सिंह, ये आवाज किसकी है?
0: इसी गांव की लड़की है, रोज सुबह गाना गाकर गांव को जगाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है अगर ये गाना ना गाए तो
1: शायद सूरज उदय नहीं होगा। नाम क्या है इसका?
0: रूपा।
1: रूपा, जिसकी आवाज इतनी सुंदर है, उसका रूप कितना सुंदर होगा।

शिवम सुंदरम। लता जी की आवाज में हमने सुने संस्था हिंदी प्रचार, संस्था हिंदी प्रचार जो चांग जो परिवार चांग गुरबीन के निर्देश में है, श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पर हम सब ने मिलकर श्रवण किए है आज इस सुबह के भजन कार्यक्रम में। दिनांक मकई श्रात नंबर 6 से, दिनांक मकई श्रात नंबर 6 से हिंदू बास स्कूल फाहोन, फाहोन हिंदू बास स्कूल फरीन अलगमीन हिंदू ऑनरवेज की तरफ से।

दीपक बुझा चला जा राम, कहाँ छुपे हो आ जा राम। दनाख मका इसरात नंबर 6 से हिंदू भाषा स्कूल फाहोन हिंदू भाषा स्कूल फरीनिंग अलगमेन हिंदू ऑनडरवेस नेदरलैंड। जानकारी के लिए 07-384-1924 पर आप तार करके और जानकारी आगे के प्राप्त कर सकते हो। देन हाग गमेंटे राजस्लेट देन हाग से श्रीमती लेना बाबू राम जी जो कैंडिडेट है गमेंटे राजस्लेट के, आपके लिए यहाँ पे पेश करते हैं।

दिया न पिए कभी अपना जल, वर्षना से हमने यहाँ से और श्रवण किए सुने वालों। और पेश किया गया है देनहाग से श्रीमती लिली मोती राम जी की तरफ से। बढ़ चलते हैं श्री नाम अली फोन मेन कंडाम हो की इंदिरा गांधी वैक से, श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से, श्री पंडित सुभाष महावीर इस ठंडी ठंडी भजन माला कार्यक्रम में। शुभ प्रभात और मंगलमय दिवस आप सभी।

हाँ जी, जहाँ याद करो बस भगवान वही है, आपकी सेवा में पेश किया जाता है सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के वास्ते। श्री नावली फोनोमैन कंडाम हुक इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्तराज, शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर, इस खूबसूरत दिवस में आप सभी को एक शुभ प्रभात और मंगलमय दिवस कह रहा है। बढ़ चलते आपको लेकर सुनने वालों, कनाडा टोरंटो और अम्स्टरडम से नेबल पैलेस, नेबल पैलेस फॉर ऑल हिपोटेकल फिनांशियरिंग आन एंड फेयर कूप फॉर वोनिंग एम्पांडन। जानकारी के लिए आप श्रीमान प्रदीप सुचित्राम से जरूर से तालुकात कीजिएगा। तार का नंबर दिया गया है 9625133 4 सुप्रभात कहते हुए।

मनुष्य का साथी है भगवान, तो बिगाड़ेगा कौन किसका। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। आपका दिन खुशियाँ से भरा रहे। पेश किया गया सुनने वालों ये सुंदर सा भजन कनाडा टोरंटो और आम्स्टरडम से नेबल पैलेस फॉर आल यू हिपोटेकन एंड फिर एंड शेयरिंग अन एंड फेयर को फॉर वोनिंग एंड पंदन। जानकारी के लिए आप श्रीमान प्रदीप सुचित्राम से जरूर से ताल्लुकात कीजिएगा। तार का नंबर जैसे हमने बताया एक बार फिर दोहरा देती हूँ, 9 6 5 2 3 3 6 4 7। लेकर चलते हैं धन अखला इस कंफेम फोर पारक से आनंद अर्जुन शर्मा ख्रूत हांडल बेफी के तरफ से सुनेंगे हम दाने दाने पे लिखा है।

दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ और देने वाला वही एक ही राम है। पेश किया गया सुनने वालों आपके लिए तन्हा अखलास कैफ़े फोर पार्क से, तन्हा अखलास कैफ़े फोर पार्क से आनंद अर्जुन शर्मा खुरूत हांदल पे फे जानकारी के लिए आप श्रीमान आनंद अर्जुन शर्मा से जरूर ताल्लुकात कीजिएगा। 9655378767 पर। जिंदगी में जिंदगी ढूंढना ही जिंदगी है, जिंदगी में जिंदगी ढूंढना ही जिंदगी है, मस्त रहो और स्वस्थ रहे। आप सभी को एक शुभ प्रभात। दना अखलास कैफ़े फोर पार्क से सुंदर खुरूत हांदल सुंदर

ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करिए। इंसान ही इंसान की दवा है, इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो। जीना है जिंदगी तो आगे देखो। पेश किया गया है Den Haag Leidskampveen voor Park. Ze zondag groothandel. Zondag groothandel in groente en fruit. Jankari Kali Ab Sriman Parshuram Mohanla Zetalukat Kidje 06-22-79-58 per. Den Haag Leidskampveen voor Park. Ze bouw- en onderhoudsbedrijf.

खुद से अपने आप से हमेशा प्यार करो, चाहे कोई तुमसे प्यार करे या ना करे। पेश किया गया सुनने वालों Den Haag Leiskamp 4 Park से बाव एन ऑनरहाउस बदरेव से, बाव एन ऑनरहाउस बदरेव जो श्रीमान हरिदत्त रोहित देवनारायण के निर्देशन में है, उनके तरफ से ये सुंदर सा भजन सभी भक्त प्राणियों के वास्ते पेश किया गया है। फागुन हिंदुस्तानी रेडियो से आप जुड़े सुनने वालों, सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। आपको हम लेकर चलते हैं सुनने वालों फाहोन रेडियो के डायरेक्ट स्टाफ पर्सनल की तरफ से तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर और सभी सुनने वालों के

तुझे प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे अवश्य अवश्य। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप बहुत सारे प्यार पेश कर रही हूँ फाउन हिंदुस्तान रेडियो के जरिए से, और यही आशा उम्मीद है कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस हाल में हो, जरूर से खुश होंगे। कहते भी कि करो शुरुआत मधुर वाणी के साथ।

दादा जी की आवाज में यहाँ से हमने श्रवण कर लिए है। मेरे पिता के थाली में से पहला निवाला किससे खाना चाहिए? पिता के थाली से पहला निवाला किससे खाना चाहिए? तो आपको बता दे कि पिता के थाली में से पहला निवाला अगर बेटी खाती है, जी हाँ बेटियाँ, आपके घर में बिटिया है और पिता जो भोजन करने बैठे, तो पिता के थाली में से अगर बिटिया खाती है तो पिता के ये तीन चीजें बढ़ती है। माना जाता है कि जब पिता भोजन करते हैं तो बेटी को सर्वप्रथम पहला निवाला उसके थाली में से जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना बड़ा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पिता के आयु बढ़ती है। ऐसा करने से यानी कि पिता के थाली से अगर बेटी पहला निवाला खाता है तो पिता के आयु बढ़ती है और पिता के रोजगार जो है उसमें भी वृद्धि होती है। और ऐसा प्रतिदिन करना चाहिए कि पिता के थाली में से पहला निवाला आप अपना बिटिया अपना कन्या को खवाएं।

थक जा ए हवा, थम जा ए घटा। लता जी की आवाज में यहाँ से हमने श्रवण कर ली है मेरे प्यारे सुनने वालों। एक्सपर्ट वाश क्यू वन फ्रेश।

0: फिल्म सागीत से ये सुंदर सा गीत निकाल दिया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये भी पिक्चराइज किया गया है, रिलीज किया गया है 1967 में। आप सुन रहे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो,
1: प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी।

कितनी सुंदर से सुना दे लता जी की, कितना आसान है कहना भूल जाओ, पर इतना आसान तो नहीं है ना। आप मेरे साथ सहमत है ये मुझे पता है। आपको ये बताना चाहती हूँ, जो आप शायद अपनी जिंदगी में भी ये सब महसूस करते हो और मेरे ख्याल से भी मैं माँ किए होगे, वो ये है कि देखो, कुछ लोग तुम्हें अपनी जिंदगी में, कुछ लोग तुम्हें अपनी जिंदगी में रखना ही चाहते हैं, पर जब उनका मन करता है तब, जब उनका मन करता है बस तब तक लोग तुम्हें अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं, जब तक उनका मन करता है बस तब तक। कभी कभी कभी जताएंगे कि तुम अपने हो, हाँ कभी कभी वो लोग तुम्हें जताएंगे कि तुम अपने हो, और कभी ऐसा बर्ताव करेंगे कि जैसे आप उनके, उनको तुमसे मतलब कुछ ही नहीं। एक दिन ऐसा बात करेंगे जैसे उनके लिए तुम ही सब कुछ हो, हाँ कभी कभी ऐसा बात करेंगे कि तुम उनके लिए सभी कुछ हो, और अगले पल, हाँ अगले पल तुम्हें कुछ पूछेंगे भी नहीं। तो इसकी सलाह ये है मेरे प्यारे सुनने वालों कि जो ऐसा, तो जो ऐसे लोग, ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके, हाँ जी हाँ, जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना, हाँ जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना, क्योंकि जितना तुम इसमें फंसते जाओगे ना, बाद में उतना ही मुश्किल होगा बाहर निकलने में। आप समझदारी से काम लेना और फरकना परखना अपने इर्द गिर्द में कि आपके साथ ऐसे तो नहीं होता है। आप जितनी जल्दी इनमें से निकलोगे आपके लिए उतनी ही फायदा होगा। अंदर स्वर्थी खून के रोप के इर्द खमानी पिलेर्द एंड दैट फॉर दीन वैनिक

फिल्म लापरवाह से, फिल्म लापरवाह से मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म। जी हाँ, नेहते एन तख्तक में ये पिक्चराइज किया गया है। किशोर दा जी की आवाज में साथ दे रहे थे चंद्रानी मुखर्जी। साथ ही साथ ये बताना चाहती हूँ कि कलयुग के साथ करवे सच, कलयुग के साथ करवे सच, वो ये है। पहला ये है कि बुरे वक्त में सगा भाई भी साथ ना देगा। कई परिवार में ऐसे भी होता है कि बुरे वक्त में सगा भाई भी साथ ना देगा। आप जिसे खास, जिसे आप खास समझोगे वही दुख देगा। आप जिसे अपना समझोगे वही आपको रुलाएगा, वही आपको दुख देगा। स्त्रियां भी विवाह करने से इनकार कर देगी, स्त्रियों भी विवाह करने से भी इनकार कर देगी। और ये भी एक कड़वा सच है। अब वो ये है मेरे प्यारे सुनने वालों की, प्रेम के नाम पर सिर्फ शरीर भोगे जाएंगे, प्रेम के नाम पर सिर्फ शरीर भोगे जाएंगे। ढोंगी व्यक्ति जो है उनकी समाज में श्रेष्ठ कहलाएगा। ईमानदार आदमी पेट भी ना भर पाएगा। और बच्चों और माँ बाप में नहीं बनेगी।

आने वाला पल तो जाने वाला है और ये पल भी बीत गया है। जो शब्द हमने कहे वो भी चला गया, सेकंड चला गया, मिनट चला गया। ये गीत जो आपने सुने ये भी आपने सुन ली है। अगर आप ये सुनना चाहते हो तो हमको दोबारा चलाना पड़ेगा। पल चला गया, पल चला गया, आने वाला पल जाने वाला है।

रुक जाना नहीं, कहती हूँ मैं भी कि रुकने का नाम मौत, चलने का नाम तो जिंदगी है। फिल्म का नाम है इम्तिहान, इम्तिहान फिल्म का नाम किशोर दाजी की आवाज़ में।

माता जी की आवाज में यहाँ से हमने मिलकर और श्रवण की है कि मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं भी एक छोटा सा बच्ची हूँ अपने ही माँ बाप की, अपने ही प्रभु की, जो उनके दी हुई ये जिंदगी है, उनकी दी हुई जिंदगी जो वही संभालेगी, हमारे तो हाथ में कुछ नहीं है। देने वाला वही है, लेने वाला भी वही है, संभालने वाला भी वही है। अगर हम इसे समझ जाए तो जीवन आसान हो जाता है।

कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, माटी के मोल बिक जाएगा फिल्म का नाम धर्म कर्म, फिल्म का नाम धर्म कर्म। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए, बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, फुर्सत मिला तो बच्चे कमाने निकल गए, वह हरे जिंदगी।

वाकई में बच्चे मन के सच्चे, इनसे कोई इतना निर्मल होता है बच्चे। अगर हम उनका सिद्धांत भी अपना जीवन में प्रयोग करें तो कितना अच्छा होगा, आप ही सोचो। पर हमारा क्या होता है, हम जस जस उम्र बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा दिमाग में ना

0: ओल्ड इज गोल्ड, ये पुराना खजाना आपके लिए लाई गई है कि चंदा मामा दूर से
1: हर एक काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07635247। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2277.

पहले और आज से ज्यादा हमको जो नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, उसका हम के इंतजार करेंगे। पर ये सुंदर सा गीत आपके लिए।

वाह रे जिंदगी, वाह रे जिंदगी, जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, जीवन के आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर को ठीक कराने में लगाया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे से शरीर को ठीक कराने में लगाया, ना शरीर बचा ना पैसा, वाह रे जिंदगी। जो पैसा हम कमाते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, पैसा कमाना चाहिए पर उसे अच्छे तरह से भी उपयोग करना चाहिए। पैसा कमाते वक्त भी आप अपने आप को भी वक्त दें, अपना परिवार को भी वक्त दें। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा ओढ़ो पहनो, घूमो फिरो उसके साथ, ना सिर्फ पैसा कमाओ कमाओ कमाओ कि ताकि बाद में वही पैसा आपके शरीर बचाने में लग जाए। तो रोना सिर्फ रोना ही पड़ेगा, और समय जो निकल जाएगा तो समय वापस नहीं चला आएगा, वापस नहीं आएगा समय। अगर हम सोचे जो हम बच्चे थे और अब कहाँ हैं, तो वो समय तो चला गया, हम सिर्फ याद कर सकते हैं। हम अक्सर लोगों के बीच में बैठते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं तो सुनते हैं कि वो सब अपना बचपन, अपना माँ बाप के साथ जो वक्त गुजारे हैं, माँ बाप के साथ जो अच्छा किए हैं, जो बदमाश किए हैं, वो सब याद करके वो कभी पछताते हैं, कभी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। हाँ, साथ में बैठ कर वो कहते हैं मैं ऐसे किया था, मेरे माता पिता ऐसा था। बचपन में सभी बच्चे शरारती रहते हैं, तो वो पल जल चला जाता है मेरे प्यारे। बचपन तो इस जन्म में नहीं आ पाएगा, हम चाहोगे चाहते हुए भी हम वापस नहीं ला पाएंगे। बचपन गया, जवान

और कठोर, कोमल यानी कि हिल सख्त सख्त, कोमल इज सख्त एंड कठोर इज हार्ड। कोमल और कठोर तो हम अपना जीवन के ताकि अपने शरीर में ताकि जीव जो है, जीवा जो है, हमारा जुबान जो है, तोंग जो है, वो जन्म से होती है। जीव जो है, जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है। इस पर हम गौर नहीं की थी, पर मुझे अच्छा लगा तो सोचती हूँ यहाँ आपके साथ ये हम आपके साथ बांट ले कि जीभा जो है, जीभ जो हमारे हैं, वो जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वो कोमल है, वो सख्त है, वो कोमल होती है। और दांत जो है, दांत तांद जो है, वो जन्म के बाद होती है और मृत्यु से पहले वो चला जाता है। हाँ, मृत्यु के पहले वो हाँ गिर जाता है, क्योंकि वो कठोर होता है, वो हार्ड। तो इसका मतलब ये है कि हमको जीवन में भी कोमल बनना रहे, कोमल ऐसा हमको ये जीवन बिताना है, कठोर नहीं। क्योंकि कठोर आप तो सुने हैं कि हमारे जुबान में, हमारे जुबान जो हुआ कोमल, वो हमारे साथ चले जाते हैं, और ये दांत जो है जो बाद में आते हैं, जन्म के बाद आते हैं, वो जन्म से पहले चले जाता है। तो कोमल कोमलता आपके साथ चले जाएगा, कोमल आपके साथ जाएगा।

महेंद्र कपूर जी ने फरमा दी कि तुम अगर साथ देने का वादा करो तो सफर कितना हसीन होगा, आप ही सोचो।

0: क्या है?
1: हमारे प्यार की निशानी।
0: तुम इस रिश्ते को गलत समझ रही हो।
1: हमारा रिश्ता कुछ और ही बन चुका है अमर। We both love each other।
0: देखो दिशा, दोस्ती से बढ़के और प्यार से कम भी एक रिश्ता होता है, जो मेरा और तुम्हारा रिश्ता है। दिशा, दिशा प्लीज।

कभी लोग नाराज होकर सफर पर निकल जाते हैं, कभी कभी लोग नाराज होकर सफर पर निकल जाते हैं, सोचते हैं लौट कर बात कर लूंगे, सोचते हैं कि लौट कर हम आएंगे तो बात कर लेंगे, मगर मेरे प्यारे सुनने वालों, जिंदगी हर बार लौटने का वक्त नहीं देता। इसका मतलब नाराजगी से कोई से दूर ना होए, बल्कि नाराज तो हो जाते हैं कभी कभी, पर मुंह मोड़ कर जाना गलत बात है। जरूर उसे सुलझा ले, उलझन जो है उसे सुलझाए के और आगे निकले, ताकि ये जो कहते हैं कि जिंदगी हर बार लौटने का वक्त नहीं देता, ऐसा ना करे कि आप जो रह जा बाकी तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। काश, तो ये काश को छोड़ो, नफरत है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसे जरूर से सुलझा लेना। ताकि बात में पछताना ना पड़े, बल्कि सुकून रहे दिल में। कि उम्मीद नहीं थी उसकी, उम्मीद नहीं थी उसकी जो हकीकत में हुआ है, उम्मीद नहीं था फिर भी हकीकत में हो गया है।

सुमन कल्याणपुर और रफी जी की आवाज में नाना करते प्यार बस तुम्हें से कर बैठे। अक्सर यही सा होता है कि नाना करते करते बस कब वो नाना हाँ हाँ में हो जाता है। बस पता नहीं या बरसों बाद जो हम बैठे तो सोचते हैं ना, हम तो नहीं चाहते थे फिर भी मान गए, चलो अच्छा हुआ। जब जब फूल खिले फिल्म का नाम। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।

0: voordeliger uit zijn met je energie?
1: Abhi tak jo mile dost wo bewafa mile. Haan, wo to ho jata hai, kyunki hame pata nahi hai, kiske dil mein kya hai. अगर हम पहले से पता हो जाए ना कि किसके दिल में क्या है, कितना प्यार है और कितना नहीं, तो हम अपना हाथ दोस्ती की ओर जरूर से बढ़ाते, पर

किस्मत से बनते हैं, दिल के रिश्ते जो है ना वो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो हमारा हजारों से होता है। जरा आप इस पर गौर करें कि दिल के रिश्ते किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होता है।

0: फूल हर मौसम में खिलते हैं, प्यार के फूल हर मौसम में खिलते हैं, प्यार का बादल हर मौसम में बरसता है, प्यार का बादल हर मौसम में बरसता है, हम मिले या ना मिले पर याद हम आपको हर लम्हे करते हैं।
1: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: अगर मगर और काश में हूँ, अगर मगर और काश में हूँ, फिलहाल मैं अपने ही

तो रोमांस रोमांस अदनान सहानी जी की आवाज में, तेरे बिना जिया जाए ना। प्यार भरा गीत आपके लिए,

ये दो लाइन आप जरूर से सुने और इसे जरूर से समझे कि आसमान इतनी बुलंदी पे जो इतराता है ना, आसमान इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, घुल जाता है जमी से ही नजर आता है। तो मेरे साथ होगा तो क्या होगा, तू मेरे साथ होगा तो क्या कहेगा जमाना, तू मेरे साथ होगा तो क्या होगा, और तू मेरे साथ होगा तो क्या कहेगा जमाना, मेरी यही एक तमन्ना और तेरी यही एक बहाना। आपको ये बताना चाहती हूँ मेरे प्यार सुनने वालों, और वो है कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर, हाँ कैलेंडर, जिसमें हम तारीख देख सकते हैं, दिन देख सकते हैं, महीना देख सकते हैं, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा तारीख है, कौन सा दिन है। उसी कैलेंडर के बारे में यहाँ से आपको दो तीन बात बताना चाहती हूँ। पहला ये है कि लखनऊ इज अ न्यू कैलेंडर बोथ ऑन ओपन आवर कैलेंडर। Leg nooit een nieuwe kalender bovenop een oude kalender. Dit brengt negativiteit in huis. Plaats de kalender altijd op de noord, noordwest of oostmuur. Plaats de kalender altijd op de noordwest of oostmuur. Plaats de kalender of klok nooit. Plaats de kalender of klok nooit op de zuidmuur. Zelf niet per ongeluk. Hou er rekening mee dat er geen afbeeldingen van agressieve dieren of verdrietige gezichten op de kalender mogen staan, omdat dit soort afbeeldingen negatieve energie in huis verspreiden. Hang geen kalender voor of achter de deur. Dit wordt niet als goed beschouwd voor de leeftijd van de gezin, voor de leeftijd van de gezinsleden. जैसे पहले अभी कही हूँ, तो प्लाट्स द कैलेंडर ऑलटाइट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ ओस्टमुर। प्लाट्स द कैलेंडर ऑफ क्लॉक नोइट ऑफ द सुइडमुर, सेल्फ नीट पर अंगुलक।

हार के बेचैन मुझे फिर मेरा हाल ना पूछो। करके बेचैन मुझे फिर मेरा हाल ना पूछो, उसने नजरें फेर ली मैंने भी सवाल ना पूछा।

जरूर से जरूर से, अदनान साहनी ने कहा कि आप जहाँ भी रहो जरूर से फाहुन को याद रखना, मेरी को भी याद रखना। वेरी रोमांटिक सॉन्ग आपके लिए चलाया जाता।

मुझे फुर्सत कहाँ कि मैं मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत कहाँ कि मैं मौसम सुहाना देखूं, तेरी यादों से निकलूं तब तो जमाना

गुस्सा, गुस्सा आपके लीवर को, आपके लीवर को कमजोर कर देता है। डड़, डड़, डड़ आपकी किडनी यानी कि आपके नीर को कमजोर कर देता है। दुख, दुख आपके फेफड़ों यानी कि लंगों को कमजोर कर देता है।

zorgen maken effecten van verdriet op de organen. Effecten van verdriet op de organen. Zorgen maken verzwakt je maag. Stress verzwakt je hart en geest. Angst verzwakt je nieren. Verdriet verzwakt je longen. प्यारे सुनने वालों, तनाव में, चिंता में, डर में, दुख में, गुस्सा में मत जियो, वो आप ही के हानि करते हैं, दूसरों को नहीं। जैसे कि आप तेल लिखिए, जैसे हम कहते हैं ना तेल लिखिए, आप अगर जलाना चाहते हो तो आप अपने उंगली से तो जला नहीं सकते, उसे आपको माचिस यानी कि लूसीफर या खास अंस्टेकर या कोई भी जिसमें आग होता है पहले उसको जलाना पड़ता है, तब फिर जाकर आप कहीं कैंडल जला सकते हो या गैस जला सकते हो। पहले आप गुस्सा करोगे तो आपके अपना हानिकारक होगा, दूसरों का कब होगा ये तो आपको पता नहीं है, पर पहले आप ही को होगा। तो कहती हूँ, गुस्सा मत करो, दुखी मत हो, डर मत। जीवन ये बहुत अच्छा है, हसीन है, इसे जरूर से हंस कर गुजारो।

कितनी अच्छा बात है ना कि जरूरी नहीं कि तुम भी चाहो मुझे। मेरा इश्क है एक तरफा ही हो सकता है।

0: क्यों मारा?
1: मां सर को शांताराम ने मारा।
0: और शांताराम को क्यों मारा?
1: तुझ तक पहुंचना था।
0: अगर मैं तुझे मार दूं अभी यहां तो
1: मुंबई नहीं ले पाएगा।

0: चिकनी चमेली अग्निपथ फिल्म का नाम श्रिया घोषाल जी की आवाज में। मेरे प्यारे सुनने वालों, ये समय ये पल आपको बहुत सारे बधाइयां है।
1: चलाओ ना नैनों से बाढ़

तीस मार खान फिल्म का नाम, और इससे पहले चलाओ ना नैनो से बान वो गीत निकाल दिया गया था आपके लिए फिल्म बोल बच्चन से। और यहाँ से ये भी सुनरगी रात के लिए शैला की जवानी तीस मार खान से।

का फान हिंदुस्तानी रेडियो है मेरे दोस्तों। कहते हैं ये चांद क्या रोशन करेगा आसमान को, ये चांद क्या रोशन करेगा आसमान को, तुम सजा लो माथे पे बिंदी, ये सारा जहां जगमगा जाएगा। इस बारे दबंग दबंग फिल्म का

0: मुन्नी बदनाम हो गए डार्लिंग, ओ माय डार्लिंग आपके लिए, कि मुन्नी बदनाम हुए डार्लिंग तेरे लिए, फिल्म का नाम। हाँ आपने तो ये जरूर से सुने हैं, हमने गीत से पहले, गीत के पहले बता दी थी। हाँ आप तो बताओ। हाँ वही दबंग, दबंग फिल्म का नाम है।
1: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है ऐसी जगह।
2: अरे झुमका भी मैं भूल गई, जाने जाने।
0: एकदम मजे मजेदार गीत आपके लिए, आपके लिए, आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन के जरिए से। एंजॉय एंजॉय।
1: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है ऐसी जगह। थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना।
2: अरे

चार कली बस देश को चली, क्यों नहीं जाएगी, जरूर से करना चाहिए जो आपके दिल में चाहत है। और वो चाहत मैं कहती हूँ, जी हाँ कहती हूँ, अच्छा होना चाहिए, वो चाहत अच्छा होना चाहिए जो खुद को आनंद दे और औरों को आनंद पहुँचाए।

0: हाँ आपने सुने कि चाल बजा देती है, चाल बता देती है।
1: प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी।

मोरजानी, सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में फिल्म का नाम आप जरूर जानना चाहते हैं और मैं जरूर बताऊंगी। फिल्म का नाम बिल्लू। जी हाँ मेरे सुनने वालों, आपने ठीक सुना, बिल्लू नाम है फिल्म का। हाल चाल नहीं पूछते, हाल चाल नहीं पूछते, लेकिन खबर रखते हो, लेकिन खबर रखते हो। सुना है आप मुझ पर, सुना है आप मुझ पर नजर रखते हो।

ये भी आप सुनिए, ये भी आपके लिए चुनकर खोज कर लाई हूँ। कि नजर से नजर मिला, नजर से नजर मिला कर तुम नजर लगा गए, नजर से नजर मिला, नजर से नजर मिला कर तुम नजर लगा गए। क्या बात है, क्या बात है, ये कैसी लगी नजर की हम, ये कैसी लगी नजर की हम हर नजर में आ गए। लिखने वाले की भी क्या तारीफ करें।

महारानी कहो तो अभी जान दे दूं। आनंद राज आनंद जी के आवास में साथ दे रही थी ऋचा शर्मा। और फिल्म का नाम, हाँ मेरे प्यारे सुनने वालों, हम क्या कहे आपसे, क्या ना कहे, पर ये जरूर कहूँगा फिल्म का नाम। आप ये बैठकर और इंतजार में है, तो फिल्म का नाम हम बता दें यहाँ लगे हाथ, धन धना धन गोल। धन धना धन गोल फिल्म का नाम है मेरे दोस्तों। मेरी हर नजर में बसी है तू ए मे दोस्त, मेरी हर नजर में बसी है तू, मेरी हर कलम पे लिखनी है तू, मेरी हर कलम पे लिखनी है तू। तुझे सोच लूं तो गजल मेरी, तुझको तुझे सोच लूं तो गजल मेरी, ना लिख सकूं वो ख्याल है तू, जो ना लिख सकूं वो ख्याल।

क्या आप भी उनका चमक छल्लो बनना चाहते हो? यू गोना बी माय चमक छल्लो फिल्म रा ऑन से निकाल दिया गया है और गाने वाला है आकोन। हाँ, आकोन यो इस गीत को गाया है। सुना है तुम ले लेते हो हर बात का बदला। आजमाएंगे कभी तुम्हारे लबों को चूम कर। आप अपना ख्याल रखा करो। मेरी जान हो तुम। ओ मेरी जान को कुछ ना होना चाहिए। मेरी जान को कुछ ना होना चाहिए।

फिर कहाँ हिसाब रखता है कि इश्क कहाँ हिसाब रखता है, इश्क जब बेमिसाल हो जाए, इश्क जब बेमिसाल हो जाए तो वो कहाँ हिसाब रखता है। आप भी ना मेरी हर रात का, मेरी हर रात का आखिरी ख्याल हो तुम। क्या बात है, क्या बात है कि मेरी हर रात का आखिरी ख्याल हो तुम।

बालमुआ के बालम और बालमुआ के बालम के बाद हम क्या लाते हैं दोस्तों, भोजपुरी सॉन्ग के मूड में आज हम हो गया है फिर से एक और हो जाए शिवानी सिंह का।

और पवन सिंह पावर स्टार पवन सिंह का भोजपुरी सॉन्ग है। अब लोग को हम कुछ मिक्स मक्स चलाएंगे, कुछ भोजपुरी कुछ बॉलीवुड सॉन्ग। और यहाँ पे नील कमल सिंह और क्या सुनाते हैं लड़की, ये लड़की क्या है दोस्तों, लड़की दीवानी।

दीवानी नीलकमल सिंह का ये सॉन्ग है। तो अगला गीत क्या है दोस्तों, पवन सिंह अस्यल्पा राज का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों पवन सिंह का ये सॉन्ग है जो आप लोग को सुनाए हैं और आगे चलते हैं तमन्ना बतिया। तमन्ना बतिया क्यों?

ही देंगी। बोले पहले सॉरी तो बोल। तो सॉरी कब बोलेंगे दोस्तों? जब सॉरी के कुछ काम, तो सॉरी बोलना कब? जब आप कुछ कसूर

बलमा बलमा अगर जिंदगी हो तेरी रोमांटिक सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग के मूड में है। मूवी का नाम है झनकान फन नहीं खतक और बलमा नहीं खत नहीं खतक का आशा भोसले का सॉन्ग के बाद हम चलते हैं दिल लगी ना किया करो।

0: Everything, every great, और दोस्तों song, lovely song, और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या होगा सुना जाए।
1: नहीं देखा कभी पहले,
0: और हम ही नहीं देखा।

और दोस्तों जैसे बताएंगे आज हम कुछ यानी कि हॉट वन सॉन्ग आप लोग को हम नॉन स्टॉप डीजे रिमिक्स सॉन्ग सुनाएंगे।

और हमारे यारो गुलाबी आंखें जो है ये मॉरीशस के लोग की इस तरह से गाते हैं। तो हम आज आप लोग को सुनाते हैं, हम चलते हैं उमेश महावीर की ओर और वो भी कुछ सुनाएंगे और तितल है मितवा।

मिथवा उमेश मोहाबीर का ये सॉन्ग। उसके बाद हम चलते हैं कुछ लोकल सॉन्ग हम आपको भी सुनाएंगे हमारे सुनने वालों, और ये लोकल सॉन्ग हम मॉरिशस के आप लोग को हम सुनाएंगे। तो हम चलते हैं संजीव बुलाओ तोर हमार लंबूर।

दूर की नचिए हमारे यारो। तो दोस्तों जैसे बताए गए हैं हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है कैनच सालिक की ओर हम चलते हैं। एगो चटनी सोका लेकर ये आते हैं। और बोले स्टॉप ड्रिंकिंग और क्या क्या भैया, हमें गीत की जरूरी है।

खुशी होई गई ली। तो ये सब भोजपुरी सॉन्ग हम आप लोग को रेडियो फाउन के माध्यम से सुनाते हैं हमारे यारो। उसके बाद में हम और एक लेकर चलती है, ये कामना के कोनो गीत है भैया, आओ मिलकर सुना जाए।

हम सुनाते हैं वो सिर्फ रेडियो फाहुन के माध्यम से सुनते दोस्तों। हम अगला गीत की ओर चलते हैं, वो भी एक भोजपुरी सॉन्ग है मॉरिशियस का।

माओ के भरमावे है हमारे यारो। तो ये गीत आपको हमने सुनाया है, तो उसके बालमा के यानी पारो के कोनो बालमा भरमावे है। तो अब हम चलते हैं अगला ओ बालमा की ओर।

का अपने बलमान से मांगे हैं, तो बलमान बोले हम जब ना लावे तो दूसर दुल्हनिया ले आवे, तो औरतिया बोले नहीं बलमा हम ही के तू ले ले। तो ये सब गीत आपको सुनने को मिलता है भोजपुरी जोन से। दोस्तों एक और हम आपको सुनाते हैं।

आपका हैप्पी स्टेशन फॉर हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। लगभग एक घंटे तक आप सुनेंगे तेरे होतों के फूल। आप जानते हैं दोस्तों, जब प्यार मोहब्बत होता है तो नजर पड़ता है आंख पर और आंख के बाद तुरंत होठ पर। जी हाँ, ये प्यार मोहब्बत की कहानी है। फिर भी जब होठ है दोस्तों तो फूलों की तरह तो हमेशा रहता है, और यही होठ तो अच्छी बात करते हैं, कभी कभी बुरे बात पर। कोई बात नहीं, होठ तो होठ होते हैं, तेरे होठों के फूल जो है प्यारी प्यारी।

होठों से तेरे होठों के फूल प्यारी प्यारी। क्या बात है दोस्तों, ये होठों की कहानी लगभग एक घंटे तक मैं पेश करूँगा। तेरे होठों के तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे जोन को घरियाली को, माइटी मुकेश की आवाज़ में आप सुनेंगे।

तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, ये नासुक नासुक होठों में कैसी बात है, ऐसी बात है जो जो दबाए के चले आए।

तेरे होठों के फूल होठों पे बस तेरी नाम है। जिस तरह से एक एक सोट एक हेम्प का क्लूप खाद जो है उसमें सिर्फ एक बटन जाते हैं, उसी तरह से ये होठ जो है सिर्फ तेरी ही नाम लेते हैं, एक दूसरा नाम का मौका नहीं है।

तेरे प्यार में पागल हो सुबह शाम, होठों पे तो सिर्फ तेरी नाम है, दूसरा नाम कहाँ से आ सकते हैं। होठों डो होठ खिले, डो होठ हिले एक गीत सुना।

जबडो होती हिलते हैं तो न सिर्फ गीत का आवाज आते हैं, एक दूसरा आवाज भी अंदर से आते हैं दोस्तों। आपकी बार तेरे मेरे होठों पे, तेरे मेरे होठों पे मीठी मीठी गीत मिटवा।

तेरे होठों के फूल आप सुने हैं। अगर आपका ख्वाहिश है हो चुनने को लिए, तो आप ये गीत सुनने के बाद कीजिए, अभी मत, थोड़ा से रुक जाइए।

क्या ख्वाहिश है, क्या ख्वाहिश है। हर पल मेरे होठों पर, हर पल मेरे होठों पर सिर्फ तेरी नाम है। क्या ये मेरी प्रेम की कहानी है।

के होठों को तारीफ करते करते मुझे डर है कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को नजर न लग जाए। हो सकता है

ले ले मजा मत भरे राग से, क्या जाने कल क्या होगी इन बहारों की अदा, क्या जाने कल क्या होगी इन बहारों की अदा। ऐ दिल तू न डर इस जहान से, ऐ दिल तू न डर इस जहान से।

तह के कदम कह रहे हैं तुझे, बढ़ते रहे जिंदगी के नशे, बह के कदम कह रहे हैं तुझे, बढ़ते रहे जिंदगी के नशे। अरे

0: जहान से है दिल तो नजर इस जहान से।
1: अभी सर उठाने का मजा मिल जाएगा, आने दे पुलिस वाले को।
2: पुलिस चौकी यही नजदीक है, कहो तो
3: मैं बुला दूं।

अभी आप सुन रहे थे एक बैठक गाना मैशअप द टाइगर्स, यानी इस ग्रुप का नाम है द टाइगर्स। हरीश सुखदेव आपको सुनाने वाले हैं एक और मैशअप। चलिए मिलकर सुनते हैं।

हरीश सुखदेव जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे एक मैशअप सुनने वालों। सोनिया सिंह आ रहे हैं प्रोग्राम में गिलबा का ग्याल।

सोनिया सिंह की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे गिलबा का ख्याल। लीला एम आ रहे हैं प्रोग्राम में सुनने वालों, और लीला एम जी आपको क्या सुनाने वाले हैं, अब चोलियाँ भीजे।

अभी आप सुन रहे थे अब चोलिया भीजे पसीन बनवारी, लीला एम आपको सुनाने वाले थे। मलेशा सिरपौल आ रहे हैं प्रोग्राम में साइड चेक।

अभी आप सुन रहे थे मलेशा शिपाह की आवाज़ में साइड चेक रसिका दीनदयाल आ रहे हैं प्रोग्राम में बोले बोले हिरनवा।

बोले बोले हिरनवा हमको न मार, हमको न मारो जंगलवा में, रसिका दीनदयाल आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं। सुनने वालों, पृथ्वी आ रहे हैं प्रोग्राम में, श्याम सुंदर।

अभी आप सुन रहे थे श्याम सुंदर पृथ्वी की आवाज में। केनेथ सालिक आपको सुनाने वाले हैं राधिका वायुली वेंगो।

स्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हरिओम, एक ही दम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रेलो आप लोग साथियों। पावन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सा भरवा प्यार नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो पावन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्णदत्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोता गण आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। बुधवार का रात्रि का साप्ताहिक प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुआ हूं यारो संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम खलिंग मेत गीत और गजल ओट इज गोट। ये यशो मिल लेकर के आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा। तो जहाँ पर भी हो, जिस हाल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो या तो काम कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। अब हमारी फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ रात्रि पेश है। मैं ढील फील लयस्तर प्लेसर के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेबलाइज्ड सिर्फ इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यारो, तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे टाइम्स कंट्रोल यूरो ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंट्रोल 0736 2247 स्टूडियो का तार का नंबर है 0736 2277। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं यारो, एनी तो फरकते हैं उनसे क्वालिटी इस आउटेड यू गारंसी एंड नैचुरली नैचुरली नैचुरली फूट सिर्फ आउटेड लेकर दरबाई फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो हमसे पहले आप सोचता हूँ एक अति सुंदर प्रोग्राम को सुना, जो खास करके हम लोगों का सबसे प्यारी बहना श्री विजयंती जी ने आप सोताओं के सेवा में पेश की। जिस तौर तरीके से विजयंती जी ने सदियों से आप सोताओं को सेवा करती आ रही है, यह शामिल है हमारे फूल टीम की तरफ से कि उनकी पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद विजयंती बहन जी हमारे फूल टीम की तरफ से और आपको भी एक शुभ रात्रि। अगर आपके घर पे शायद हो सकता है एक खुशी का दिन जश्न मनाया जा रहा है और ये भी हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं। हो सकता है कि आप विवाह संस्कार के तैयारियां में भी लगे हो। जो भी खुशी के दिन जश्न आप सभी मना रहे हैं हमारे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर ये विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। हरिओम। अगर आपके घर पे एक दुख का घड़ी आन पड़ा है, आप एक मातम में हो गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है और ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को शयन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। जो बीमार लाचार है आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द चंगा हो जाए, बेहतर हो जाए। अनित फरखीत हैं साथियों, जिंदगी का मजे रोजाना लेते रहना, हो सके तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी सुनते रहना और थोड़ा बहुत हम लोग के बारे में जरूर बातें शांति करते रहना। फनहार्त बीत खबर कामयाब हो तो हमारी फूल टीम की तरफ से आपको तह दिल से बधाइयां ही बधाइयां फॉर ऑल खास दौर बंधु। और हो सकता है कि आप कल या आज और परसों कामयाब नहीं हुए हो, तो चिंता के कोई बात नहीं है बंधु,
Morgen is weer een dag, hè, din penin op neaper viswaas, bruza, yakin, zelfvertrouwen. Aur thora jor tor se badhate rehna, aur saath hi saath koshish bhi jari rakhna, binti paath, sab bhi saath hi saath karte rehna. To ho sakta hai, haan, zarur ho sakta hai ki kamyabi bhi aapke kadmon ko jald se jald daur daur kar aakar chum sakte hai. Dekho, mehnat to hai daulat ka yari saathiyo, dat hebben we toch. Thuis, op school, op ons werk, ook vooral zo'n beetje geleerd, hè. Never give up, brother and sister. Sozo lobby lobby and blessings to all of you. En natuurlijk bedankt voor het luisteren. Dit is mijn privésweet, maar de voetteam betreft zich zoeswagen. Dan fijne vakantie. Blijf luisteren naar Vahon in de Stani Radio. Je gaat het zeker leuk vinden, en dat meen ik ook. अब हो सकता है कि आप देश को छोड़ के विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, तो आपको भी फूल टीम की तरफ से एक शुभ यात्रा, फाइन वैकेंसी। तमाम लोग सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को ओपन वैकेंसी एड्रेस इंटरनेट के लेयर द्वारा, ओपन लैपटॉप, टैबलेट ऑफ स्मार्टफोन, तो आप भी सुनिए हम लोगों को। सो बेंट यू एंड ब्लाइफ टू फनलस ऑफ द होस्ट ऑफ न्यू फेवरेट रेडियो स्टेशन एंड दैट इज नेचुरली हमारे देन हाग शहर का द वन एंड ओनली फाउन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस मी गुडू। साथियों, प्रोग्राम का शुरुआत तो मैं सदियों से करते आ रहा हूं, वही शिक्षिका और सबक से भरा हुआ बयान के साथ। From the movie Lalkar 1972, composed by the brothers Kalyanji Anandji, aur hamesha ki tarah aap sabhi ko sunane ko ja rahe hain Suron ka Badshah, the King of Melody, Padma Shri Mohammad Rafi sahab ji, kya galo muskuralo mehfil se jalo, kya jaane kal koi saathi chhoot jayega, jeevan ke door to bari kamzor hai yaro, ye kab toot jayega, ye kab samapt ho jayega, ye to sirf upar wale ko maloom hai, isliye hum लोग तो हमेशा की तरह आप सभी से कहते रहते और सरा कहते रहेंगे कि हैप्तु नाश्ता तैदलीफ बंधु, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है ना, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम में कुछ पुराने नगमे जो मैं सिलेक्ट किया हूँ ढेर फर्स्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स के धुने। उसके बाद फ्रॉम नीख तोत हाल्फ एलफ खात लाइस्टर जिन मूवीज में महान अभिनेता रही मैन द हेट मैन फ्रॉम ऑन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री द वन एंड ओनली धर्मेंद्र जी ने काम किया है। बीच में कुछ ज्ञान के बात है, शेर शायरी भी है। तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 11:30 बजे यानी 10:30 बजे रात्रि तक चलेगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, और यही हमेशा मैं कहते रहूँगा आप सभी से कि हंसते रहो, हंसाते रहो, गाते रहो, बजाते रहो, जियो और जीने दो साथियों। रफी साहब।

गालो मुस्कुरालो महफिले सजालो रफी साहब जी के मशहूर आवाज में हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। ऑन हिंदुस्तान रेडियो पे आप छू रहे साथियों, 13 मिनट गुजर चुका है 8 बजकर। तो आज का इस हसीन रात्रि का शुरुआत मैं करता हूँ एक बहुत ही पुराना मूवी से निकाला हुआ है अति सुंदर बयान। एक फिल्म हमारी याद आएगी और जरा दिल को थाम लीजिए, लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस। द माइटी मुकेश जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे साथ देरी है भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी। सोचता हूँ ये क्या क्या मैंने

बयान आप सुन रहे थे एड फिल्म हमारी याद आएगी 1961, केदार शर्मा का बनाया हुआ अति सुंदर धुन, खसोंग डोर क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी और मायती मुकेश। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं साथियों, एक बार फिर आप सभी की खिदमत में अनमोल डुएट ओक सॉन्ग डोर लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश, और इस बार साथ दे रही है पुराने जमाने के मशहूर गाने वाली द ग्रेट मुबारक बेगम फ्रॉम द सेम मूवी हमारी याद आएगी, केदार शर्मा जी के बनाया हुआ ये अति सुंदर धुन। मिलकर सुनते हैं फरिश्तों की नगरी में।

सॉन्ग लाखों करोड़ों का दिल चुराने वाला द माइटी मुकेश जी के ब्यूटीफुल आवाज में इतनी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। हमारी याद आएगी इस मूवी नेम रिलीज इन 1961। Is minuut 24 over 8 hoort ook hij satio oraktion hij apika muncha radio station per hamare den haasher ka faun industani radio aur program chal raha hai geet aur gazal old is good sangeet karga dasta naam karyakram agla bayan the man with the golden voice from the Bollywood film industry The great talentjik en beautiful avans me. Je etie zonder bayan uit de film Minar 1954. Kabhi tanhaiyon mein.

हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का डिग्रे तलत जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। आई टू फिल्म मीनार 1954। एक मिनट रह गया है 8:30 बजने में और इस बार लाते हैं प्रोग्राम में हमारे महान फनकार डिग्रेट दादा हेमंत कुमार के आवाज में आप सुनेंगे अति सुंदर बयान। Accompanied door one of my favorite music director from the Bollywood film industry, Mr. M&M, the great Madan Mohan Ji, uit de film Mohar 1959, alfazi hai Rajendra Krishan Ji ka, milke sunte hai Dada Hemant Kumar ke awaz mein aur unhi ke yaad mein, beautiful song kho gaya jaane kahan.

ब्यूटीफुल सॉन्ग है, अति सुंदर बयान है आप श्रोताओं ने सुना। और ये भी महान फनकार हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का फीतरान, जिसे हम दादा हेमंत कुमार के नाम से जानते थे, और उन्हीं के याद में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। आई डू फिल्म मोहर 1959, गकॉम्पोनेट डोर मास्टर मदन मोहन, और अल्फा से था महान लेखक डिग्रेट राजेंद्र कृष्ण जी का। तो साथियों, वक्त हो गया कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना। पुराने जमाने

और इस ज़माने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने ज़िंदगी तकलीफ के बारे में इतनी सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। यह शामिल लेकर कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे। तो ज़रा गौर फरमाएं, बहुत ही पुराने ज़माने का आदमी था चीनीज फिलोसोफ श्री कॉन्फ्यूशियस, लीफ्ड फ्रॉम 479 टू 551 फॉर क्रिस्टस। तो ये महान विद्वान महान ज्ञानी ने कुछ बातें लिखे हैं जिंदगी के बारे में। अर्ज किया है श्री कॉन्फ्यूशियस जी ने कि हिलास एक सख हम खस्ताख फॉरवर्ड खान, maar ik zag hem nooit zijn vooruitgang remmen. Over het doel heen schieten is niet zo erg als het doel niet bereiken. Mij bedroeft het niet dat de mensen mij niet kennen, het bedroeft mij alleen dat ik de mensen niet ken. Kennis van de strekking en de kracht van de woorden is de eerste voorwaarde voor de kennis van mensen. Wie zijn plicht ziet en hem niet vervult, is een lafaard. Wie werkelijk goedgezind is, kan nooit ongelukkig zijn. Wie werkelijk wijs is, kan nooit in de war worden gebracht. Wie werkelijk dapper is, heeft nooit angst. Er is niemand die niet eet en niet drinkt, maar weinigen zijn zij die werkelijk weten wat smaak is. De voorname geeft altijd 100%. Wie de kracht van de woorden niet kent, kan de mens niet kennen. Onveranderlijk is slechts de edelste der wijzen en de laagste der dommen. Zonder grootmoedigheid en uiterlijke droefheid, zonder diep gevoelde smart, dat zijn dingen die ik niet kan aanzien. De laatste van vanavond: gij kent het leven niet en wilt van de dood iets weten? तभी कुछ ज्ञान के बातें आप सुना जो जिंदगी के बारे में जाता है। यही आशोमी लेकर इन बातों को मैं आप सभी तक पहुंचाया कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे। 7 मिनट गुजर चुका है 8:30 बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लाइव ब्रॉडकास्टिंग हमारे देन हाग शहर से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के बड़े स्टूडियो से। अगला बयान जरा दिल को थाम लीजिए। लोगों का कहना है कि ये रफी साहब जी का आखिरी सॉन्ग था जो वो महान संगीतकार द ग्रेट नौशाद अली जी के साथ बनाया था। जबरदस्त सॉन्ग है, जरा संभालिए अपने आप को। जिस रात के ख्वाब आए, वन ऑफ माय फेवरेट रफी साहब जी का ये अति सुंदर गजल मिल के सुनते हैं स्पेशल आप सभी प्रिय साथियों के नाम।

Beautiful song, wonderful song, a masterpiece of composing by maestro Nawshad Ali. Hoor je het ha? Agri recording, revisa, over Nawshad Ali ke saad. 17 मिनट रह गया है 9 बजने में. साथियों आप चुन है आप ही का मनचाहा रेडियो स्टेशन पर हमारे डन हांक्षर का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो. अगला बयान एक और जबरदस्त सॉन्ग है जो बन के तो बना लेकिन निकला कभी नहीं. अनरिलीज्ड सॉन्ग सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर एड फिल्म जो कभी निकला नहीं रिलीज नहीं किया गया तेरे बगैर. एक बहुत ही जबरदस्त गाना इस फिल्म में भी था रफी साहब का कि कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर. ये दोनों गाना भी उस फिल्म में था. तो मिलके सुनते हैं एक कॉम्पोनेट और मास्टरो मदन मोहन जी मेरे अशकों का गम. ब्यूटीफुल सॉन्ग by Lataji.

A masterpiece of composing, itni meethi dhun banaya the great music director Madan Mohan ji ne khas karke apne behan Lata ji ke liye. Kya baat hai, Yamardat zo'n mooie film niet uit is gebracht, ka Karina. 12 minuut baki hai, saathiyo, nau bajne mein. और इस बार लाते हैं प्रोग्राम में संगीतकारों और संगीत प्रेमियों का बादशाह और शहंशाह हसीनों का पुजारी द ग्रेट किशोर दा जी. एक फिल्म प्रियतमा कंपोनेड और माएस्ट्रो राजेश रोशन और लिखा है थी चंद्रमयान को द ग्रेट योगेश जी ने. कोई रोको ना, ऑप्शन किशोर दास.

की इस हसीन रात्रि के प्रोग्राम में जो आप श्रोताओं की सेवा में लाइव प्रस्तुत किया जा रहा है, हसीनों का पुजारी किशोर दा के ब्यूटीफुल आवाज में एड फिल्म प्रियतमा योगेश का बनाया हुआ लिखा हुआ है अति सुंदर धुन कॉम्पोनेड और रजेश रोशन जी। बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम 20 मई 2026 का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। मौसम तो जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो बहुत ही हसीन था, तापमान तकरीबन 15 और 16 के दरमियान था। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। तो पहला अध्याय जो हमेशा संगीतकारों का दास्तान नाम कार्यक्रम में जुड़ा हुआ है, एक आखिरी बयान आप सुनेंगे, उसके बाद विज्ञापन। जान ओ दिल दोनों है हाजिर, क्या बात है क्या अल्फाजे है। एड फिल्म क्या बात है, लॉफ एंड मर्डर, महान संगीतकार ओपी नायर का कंपोज किया हुआ है, अति सुंदर बयान द ग्रेट ग्रेट ग्रेट आशा भोसले जी के आवाज में। Enjoy the music.

साउंड हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं के शो में लाइव ब्रॉडकास्ट है। घड़ी की तरफ देखता हूं तो 2 मिनट गुजर चुका है 9:00। हमारी फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एरोटिक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स, सोशियोलॉजी लोबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नेचुरली बेडंक्ट फॉर हेट लुइस्टरन। जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइशें, जरूरी खबरें, इश्तिहारे, देंक अनफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो किफायत से नाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना आप मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतनी बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को ऑनलाइन देश भर में नहीं मिलेगा यारो, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेलेटेडेंस कंटोर उर फन मांडाग तो फ्रेडाग ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंटोर 07-35-62-47, और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-362-2077। जो भी रेडियो का काम होना, देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। यू बेंट फन हार्ट वेलकम। बेंट यू नो खेन लेट फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। रिसेंट है वो ओक ऑन से एक करा ओक टीम फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर हेर फिर ओम रूपर्स लाइव फॉर यू बिन कोर्ट खान सिंगन। फॉलो ऑन सोशल मीडियाज एंड ऑन ओम रूपर्स दान होर्ती ऑफ सिटी हेल बिन कोर्ट वार वो लाइव फॉर खान सिंगन है। Daar bent u van, natuurlijk van zeker van harte welkom. Zo, aan wie hem loka member benen, ou roko bi benen. Sabi jankari is kebar me ap taar kre op 07-365-2247 en vragen naar onze teamleider van Faun Industrial Radio, the one and only maestro Johnny number 1. इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यारो, रिक्लाम बनाते रहना, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना। और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, और हो सके तो थोड़ा धन ढोड़ा भी पीट देना हम लोगों के बारे में। लव यू। वादे के मुताबिक बढ़ते हैं प्रोग्राम के तरफ, और देखा जाए तो बीते हुए सप्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म सीता और गीता तक। जी हाँ दोस्तों, अब आप नगमे सुनेंगे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किए हैं। तो कुछ नगमे बीते हुए हफ्ते में सीता गीता फिल्म का मैं सुना चुका था, कुछ रह गया है सुनाने को। मैस्ट्रो आरडी बर्मन का साज और आनंद बख्शी के अल्फाजे आप सुनिए। अति सुंदर बयान पद्म भूषण दादा मन दे जी के ब्यूटीफुल आवाज में, और खास करके हमारे जाम के चाहने वालों के लिए। अभी तो हाथ में क्या है, आगे सुनिए।

क्या खूबी से मनरे जी ने ये शराबी के बारे में गाना गाया है, क्या बात है। अरे हे कनत ऑप्शन परफेक्ट मनीर ओवर पद्म भूषण मन्नाडा, ये जो फिल्म सीता और गीता। 10 मिनट गुजर चुका है साथियों, 9 बजकर अगला बयान है और ये भी आखिरी बयान होगा फिल्म सीता और गीता में से जो आप सुनेंगे। और इस बार क्या बात है, जरा दिल को थाम लीजिए, लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये शराबी यानी ये अल्कोहल के प्रमोशन कर रही है लता जी अपने ही अंदाज में। इस ओक यूनिकॉर्न, हाँ जी हाँ मैंने शराब पी है। द ग्रेट लता जी आर डी बर्मन के साथ आनंद बख्शी के अल्फाज़े।

Beautiful song, wonderful song, Le Tajike, beautiful avas, met wat een promotie van alcohol, Bharat Ratn Queen of Melody, Le Tajike, beautiful avas, met het is een derbyaan aan z'n taal niet zo'n naam, en wie zat die zaad uit de film Sita or Gita. Zat je op lekker til de afsmiko ik movie do also release kia werd ha in 1972 me oude dikke jij film Samadhi is de film sneen oude is film me Dharmendra ji ne kaam kia hai Malkai Husn de Vleet Asha Parekh ji ke saad Beauty Queen Jaya Bhadri ji bhi is film me kaam kia hai संगीतकार एक बार फिर आर डी बर्मन जी के साथ और सविता ने लिखे है द ग्रेट मजरू सुल्तानपुरी जी ने फिल्म समाधि से अति सुंदर बयान जो मैं रख चुका हूँ प्लेयर में आप सभी को सुनाने के लिए एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी आर डी बर्मन के साथ पर के कांटा लगा बंगले के पीछे क्या बात है ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम

by maestro Ardy Burman from the movie Samadhi 1972. Queen of Melody, Lata Mangeshkar ji ke beautiful awaaz mein. 21 मिनट गुजर चुका है, 9 बजकर साथियों, और आप चुन है आप ही का मन चाह रेडियो स्टेशन पर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो डन हाक शहर का, और प्रोग्राम चल रहा है गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड, नगमे फ्रॉम द मूवीज जिनमें महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किया है. एक फिल्म समाधि, आप सुनिए ये अति सुंदर बयान, दिल को छू लेने वाला नगमा सुनने को जा रहे आप सभी को द ग्रेट ग्रेट ग्रेट आशा भोसले जी की याद में.

सुंदर जबरदस्त सॉन्ग आप श्रोताओं ने सुना, जब तक रहे तन में जिया, डिग्री आशा जी के ब्यूटीफुल आवाज में, एक कंपोनेड और आडी बर्मन फ्रॉम द मूवी समाधि, नेहरिंग टू ए सेफ एंड अल्फाज था मजरू जी का। 4 मिनट रह गया है 9:30 बजने में साथियों, और आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर। जाने जाना जाओ कल फिर आना, क्या रैम है मोया रैमिंग मम फिर खुद खरेम थे, सुनाने को जा रहे हैं ये अति सुंदर बयान आप सभी को। और इस बार हसीनों का पुजारी और संगीतकार का बादशाह और सहिंशा डवाने डोली किशोर दा ऑफ सेंट बेस्ट।

जाने जाना कल फिर आना एड फिल्म समाधि '72 किशोर दा ऑप्शन बेस्ट गकंपोनीड डोर मैसो आडी बर्मन।

मिनट व्यतीत हो चुका है साथियों, 9:30 और आप चुन है फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो पर। तो वक्त हो गया है ना कुछ शेर शायरी हो जाए। हमारे खास करके शेर के चाहने वालों के लिए कुछ नए नए लिख कर भेजा है भाई भूपेंद्र जी यारों का यार मेरा डायरेक्ट फ्रॉम मुंबई से थी। उम्मीद हमेशा अपने दिल में जगाए रखना, उनके आने के इंतजार में पलके भी बिछाए रखना। वो नहीं तो कोई दूसरी आएगी, वो नहीं तो कोई दूसरी आएगी, बस तुम प्यार के दीप जलाए रखना। क्या बात है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, रिमेंबर दैट ब्रो। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, ये भी रिमेंबर करना। पानी के बूंद कहीं टिकती नहीं, पानी के बूंद कहीं टिकती नहीं, और ईमानदारी मुझे कहीं दिखती नहीं। खरीदारों के मंडी में खड़ा है, खरीदारों के मंडी में खड़ा है, कशिश जितनी मर्जी बोली लगा ले। कुछ

ना रहे हो तुम वही, ना मैं वो रहा हूं ना रहे हो तुम वही, बातें और ही है जो बेकार अब बची, बातें है ही है तो बेकार अब बची, तुझको भुला दिया दिल से मिटा दिया, तेरा ना लूंगा अब नाम मैंने, ना वो रहा जो कभी मैं था, भूल गया तेरा पता तुझसे जुदा होके हम जुदा, भूल गया मैं ना वो रहा हूं ना रहे हो तुम वही। आगे के प्रोग्राम में कुछ और कोशिश करूंगा सुनाने को। अगला बयान फ्रॉम द मूवी समाधि, और इस बार एक अति सुंदर द्वैत आप सुनेंगे, किशोर दा और लता जी के ब्यूटीफुल आवाजों में, कंपोनेड और मास्टर आदि बर्मन, geschreven door Majroo Sultanpuri. Beautiful song, special aap sabhi priye shrotaon ke naam, and please enjoy the music. Kya nagma hai, kya dhun hai, aur jis khubi se ye dono ne gaaye hai ye nagma ko mag ook gezegd worden en geprezen worden. Maine dekha ek sapna, क्या देखा आगे सुनिए।

महान गाने वाले हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का सुरोका देवी द ग्रेट लता जी और संगीतकारों का बादशाह और सहिंता हसीनों का पुजारी द ग्रेट किशोरदा एक फिल्म समाधि निकटिंग ट्विन सिंह कंपोज बाय मास्टर आर डी बर्मन। आखिरी बयान आप सुनेंगे ये फिल्म समाधि कुछ लंबा चौड़ा नगमा है दो भागों में और सुनाने को जा रहे हैं शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान डॉन एंड ओनली पद्म भूषण मन्ना दे जी कि ये खेल है तकदीर के। जरा अल्फाजे पे जरूर ध्यान देना। कंपोज बाय राहुल देव बर्मन और अल्फाजे है मजरू जी का।

सुंदर बयान शिक्षा और सबक से भरा हुआ ये खेल है तकदीर के। ग्रेट सिंगर पद्म भूषण मन्ना डे जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना है। जो फिल्म समाधि कॉम्पोनेट डोर राहुल देव बर्मन जी और शरीफ डोर मजरू सुल्तानपुरी। 10 मिनट रह गया है 10 बजने में साथी, और आप चुन है आप ही का मन चाह रेडियो स्टेशन पर हमारे देनाक्षर का फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर 24 आवर्स एट योर सर्विस में गुदू। अगला बयान सभी फिल्म जो आप अभी तक नगमे सुने हैं और इन फिल्मों में द ग्रेट धर्मेंद्र जी ने काम किए हैं, तो सभी नगमे फिल्म समाधि का आप सुन चुके। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो ऑल्सो रिलीज किया गया था 1927 तक में, फिल्म राजा रानी। और इस एक बार फिर इस फिल्म में काम किया है द ग्रेट धर्मेंद्र जी, मलकाय हुस्न हेमा मालिनी जी के साथ, दिलातर ऑक्शन फ्रोवर्ट और साथ ही साथ प्रेमनाथ भी काम किया है इस फिल्म में, द ग्रेट प्रेम चोपड़ा भी, एनाटेलिक कॉमेडियन जॉनी वॉल्कर जी ने भी इस फिल्म में साथ दिया है। महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ है और सभी गाने लिखा है द ग्रेट आनंद बख्शी जी ने। तो फिल्म राजा रानी का ये अति सुंदर सॉन्ग आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए। एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी के आवाज में ये अति सुंदर बयान कि कितना मजा आ रहा है, क्यों नहीं क्यों नहीं।

फाहम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 2 तक 7 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। 20 मई 2020 का ये हसीन रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हमारी फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। अन तिलक वेरिक्स बविशन गर्ल्स सोशल विलो बी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एन अतिलक बदंत फॉर हेट लॉइस्टरन। तो जो भी रेडियो का काम हो ना, देंक अन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। सभी जानकारी बेल ऑफ 07-365-2247 कम दौर। ये तो स्टूडियो का तार का नंबर है 07-362-2077। जो भी रेडियो का काम हो ना, देंक अन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी, क्वालिटी स्टार्ट ऑलवेज ऑफ द ईस्ट प्लांट्स एंड यू बेंट फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, और रिक्लाम बनाते रहना, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और हो सके तो थोड़ा बहुत ढंढोड़ा भी पेट देना हम लोगों के बारे में। रिमेम्बर, आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना, मिलजुल के हम लोग काम चलाते हैं आप सभी के सेवा में। बेंट यू नो खेलेत फन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सो सी ऑल फाकर फन ओंस ऑफ फन ऐप गोट वेवर सेंट ओक ऑन से एक करा ओक सन टीम वार हेल फेल omroepers, we zijn een tijdje aan het oefenen en we hebben ook her en der een paar keer links rechts al opgetreden. En binnenkort kunt u wat van ons verwachten, hè? Speciaal voor onze luisteraars zijn we leuke dingen aan het voorbereiden. Dus volg onze sociale media's en onze omroepers, dan hoort u zeer zeker binnenkort waar wij voor u live gaan zingen. Dan bent u ook zeker van harte welkom, toch? वादा के मुताबिक घड़ी की तरफ देखता हूं तो 6 मिनट व्यतीत हो चुका है 10 बजकर और कुछ गाने रह गया है सुनाने के। फिल्म राजा रानी का जो रिलीज किया गया था 1976 में, तो दूसरा सॉन्ग आप सुनेंगे इन फिल्म राजा रानी। और इस बार द ग्रेट लता जी एक बार फिर आप सभी के सेवा में। दुनिया का मेला, मेले में लड़की, और क्या होने चाहिए, आगे सुनिए।

Beautiful song, Dunia Kamela Mele Mele Lurky, from the movie Raja Jani. Het is onderbegaan, composed by Mahan Sangeetkar Jury the Great, Lakshmikant Pyarelal, aur awaaz thi Bharat Ratna Queen of Melody, the great, great, great, Lata Mangeshkar ji ka. 12 मिनट गुजर चुका है साथियों, 10 बजकर और आप चुने आपकी का हैप्पी स्टेशन देन अक्षर का फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्फस मी गुदू. अगला बयान एक मजेदार सॉन्ग है, ए बी सी डी छोड़ो और कुछ और करो ना, यानी प्यार करो. Ik ben vier uit de film Raja Jani 1972, LP Lakshmikant Pyarelal ke saanch par. Ik ben vier, the great, great, great Suroka Devi Lata ji.

ब्यूटीफुल मजेदार सॉन्ग ए बी सी डी छोड़ो और कुछ और हम लोग मिलके करें ना, खेले आंख में चोली, ये कह रही थी भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, एड फिल्म राजा जानी 1972, कंपोज बाय महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और अल्फाज़े था आनंद बख्शी जी का। तो साथियों वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है, कुछ आखिरी शेर्स हो जाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। और शेर्स है कुछ साकी और शराबी के बारे में। अर्ज किया है भाई भूपेंद्र जी, मस्जिद खुदा का घर है पीने की जगह नहीं, मस्जिद तो खुदा का घर है पीने की जगह नहीं, काफिर के दिल में जा, काफिर के दिल में जा, वहां खुदा नहीं। हम लाख अच्छे सही लोग खराब कहते हैं, हम लाख अच्छे सही लोग खराब कहते हैं, बिगड़ा हुआ वो हमको नवाब कहते हैं, हम तो ऐसे बदनाम हो गए हैं कि पानी भी पिए तो लोग शराब कहते हैं। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात गुजरी तो उतर जाएगी, किसी की आंखों से पियो, किसी की आंखों से पियो, खुदा की कसम उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। हर बात का कोई जवाब नहीं होता, हर बात का कोई जवाब नहीं होता, हर इश्क का नाम खराब नहीं होता, यूं तो झूम लेते हैं नशे में पीने वाले, यूं तो झूम लेते हैं नशे में पीने वाले, मगर हर नशे का नाम शराब नहीं होता। तोहफे में गुलाब लेकर मत आना, कब्र पे चिराग लेकर मत आना, बहुत प्यासे हैं हम बरसों से ऐ मेरे दोस्त, बहुत प्यासे हैं हम बरसों से ऐ मेरे दोस्त, जब आना तो शराब की बोतल और दो गिलास लेकर आना। आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, नशा मोहब्बत का हो या शराब का, नशा मोहब्बत का हो या शराब का, होश दोनों में खो जाते हैं, फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है कि शराब सुला देती है और मोहब्बत रुला देती है। था कुछ आखिरी शेर्स हमारे आज के हिस्से के कार्यक्रम में। अगला बयान और वो भी एक आखिरी सॉन्ग होगा आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। आजा कुछ कह जा, ये कह रही है लता जी अपने मीठी आवाज से आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं को। और ये भी फिल्म राजा जानी से निकाला हुआ हूँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पर आनंद बख्शी के अल्फाज़े। एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ ये आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में आखिरी बयान। 8 मिनट रह गया है दोस्तों 11:30 बजने में, अरे 10:30 बजने में, सॉरी।

आजा राजा और कुछ कह जा और कुछ सुन जा। बहुत ही मीठी और प्यारी सॉन्ग आप सुना, एड फिल्म राजा जानी, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का सुपरहिट मूवी एड 1972। भारत रत्न सुरका देवी क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सर्वन किए। कंपोज अरेंज बाय महान संगीतकार जोड़ी द ग्रेट ग्रेट ग्रेट लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी और अल्फाजे था द ग्रेट पुएट महान लेखक द ग्रेट आनंद बख्शी जी का। साथियों धीरे धीरे वक्त भी करीब आ गया है ना आप सभी से विदा लेने को। यही तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम, प्रोग्राम जो समाप्त होने को आया। यही आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं साथियों कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप सभी को सेवा और खिदमत करने में, यही कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने मेरा साथ दिया तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे मैं आप श्रोताओं से फिर मिलने वाला हूं सरनामी संगीत लेकर। पहला अध्याय में कुछ गैठक गाना, दूसरा अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक और लास्ट यूर मिस्टाल नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। हमारे बात आप श्रोताओं को सेवा करने वाली है कुछ आधे घंटे के प्रोग्राम प्रेजेंटेड और अनसिलिफ शेषी द ग्रेट विजयंती जी। विजयंती के बाद विज्ञापन सुनेंगे फन एलफ्यूर और उसके बाद एन हेरहालिंग फन प्रेजेंटेड न्यूज डोर उनस टीम लीडर द वन एंड ओनली माएस्ट्रो जॉनी नंबर वन। तो मुझे आप सभी इजाजत दीजिए, प्रोग्राम को जरूर सुनते रहना, मजे लेते रहना, फॉर स्ट्रक्स वेल्थरिस्ट सोशल लॉबी लॉबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नेचुरली बेडंक्ड फॉर हेट लाइस्टरन। और जाते जाते तो हमेशा की तरह कुछ गुनगुना देता हूँ दर हेमंत कुमार के याद में, इस बार जबरदस्त सॉन्ग है मेरे दिल के करीब।

द टाइटल फ्रॉम द मूवी गीत गाता चल से भी आप सुन रहे थे, आपको सुनाने वाले थे जसपाल सिंह। गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन। लता जी के साथ में किशोर डा आपको सुनाने वाले हैं।

फ्रॉम द मूवी गाइड से अभी आप सुन रहे थे। लता जी के साथ में किशोर दा आपको मिलकर सुनाने वाले थे गाता रहे मेरा दिल तो ही मेरी मंजिल। मुकेश जी आ रहे हैं प्रोग्राम में ओ मेरे हमराही।

द माइटी मुकेश जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे ओ मेरे हमराहे क्यों तेरा मन घबराए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, फ्रॉम द मूवी वक्त से हम पेश करते हैं महेंद्र कपूर जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, आशा भोसले जी के साथ में महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी वक्त से हमने पेश किए हैं साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। मोहम्मद रफी जी और लता जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे, लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आया सावन झूम के। लता जी और मोहम्मद रफी जी आपको क्या सुनाएंगे, बेहुरी में सनम उठ गए जो कदम आ गए पास हम, फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी।

फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

0: हिंदुस्तानी रेडियो।
1: दोस्तों और यहाँ से कुछ मिली जुली पुरानी और नए गाने से हम आप लोग को सेवा करते हैं, सेवा करेंगे दोस्तों, और आपको हम यहाँ से खुश करेंगे। और आप जहाँ भी हो हमारा प्रोग्राम आप सुनते रहो, या गाड़ी में बैठे हुआ होगा, या घर में, या कमरे में, या सूरीनाम देश में, या जहाँ भी हो हमारा रेडियो फाहुन के प्रोग्राम आप लोग बस सुनते रहो। और आपको हम प्यार भरी गाना, पुराने गाने, कुछ नए नए गाने से हम आपको सेवा करेंगे। अब देखा जाए, कोई बता दे दिल है कहाँ, आपको मालूम है कि आपका दिल कहाँ है। एक द्वैत सॉन्ग की ओर हम जाते हैं, फिल्म के नाम है मैं चुप रहूंगी, और सुनील दत्त मीना कुमारी का ये गाना है हमारे दोस्त।

बता दे ये दिल है यहाँ, और दर्द भी वही होता है दोस्तों, जिसका दिल होता है उसका दर्द भी वही बताते हैं कि कहाँ होता है। और ये फिल्म मैं चुप रहूँगी के ये गाना हमने निकाला है, सुनील और मीना कुमारी का ये फिल्म है दोस्तों। और अपना प्रोग्राम को हम अगला गाना की ओर जाते हैं, मस्त भरी पुराने गाने की ओर हम आप लोग को सुनाएंगे। लता जी और मोहम्मद रफी जी क्या गाया है, शमी कपूर का ये फिल्म प्रोफेसर है, और ये गाना मैं चली आप सभी लश्तराज के लिए है जो तार करते हैं।

और मई चली और कहाँ चली, आप तो अपने जानते हैं कि कहाँ चली। और लता जी और मोहम्मद रफी का ये गाना फिल्म प्रोफेसर से हमने निकाला है और इसमें काम किया है शमी कपूर ने ये फिल्म में। दोस्तों और अगला गाना की ओर हम चलते, मस्त भरी गाना हम आप लोग को आज आज के प्रोग्राम में सुनाएंगे। आप तो जानते हैं दोस्तों पुराने गाने में और कितनी मजा है। कहते हैं कितना हसीन है मौसम, और मौसम कब हसीन होता है जब अगर आपके दिल में कुछ गुनगुनाते हैं, आपके पेट में कुछ खुजली होता है। तब चाहे बारिश के मौसम भी होगा, चाहे जो भी मौसम होगा, लेकिन आपको हसीन जरूर लगेगी। फिल्म आजाद का ये गाना है जो हम आप लोग को अभी सुनाएंगे। दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इस फिल्म में ओल्ड रोमांटिक हिट्स दोस्तों कितना हसीन है ये मौसम।

अगर जो आप के साथी जो है और वो जो खूबसूरत है तो मौसम की ये खबर हो जाता है, तो मौसम जो भी होगा वो आपको अच्छा लगेगा। फिल्म आज़ाद का ये फिल्म नई खतीन 5x5 तक का दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इसमें काम किया है दोस्तों। और हम आगे को बढ़ते हैं, फिल्म तीसरी मंजिल की ओर हम जाते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाले और जाने कहां, इसमें शमी कपूर, हेलन, आशा परेख इसमें काम किया है दोस्तों। रफी जी और आशा भोसले आपको क्या सुनाते हैं, आओ मिलके हम दोनों, हम सब मिलके सुना जाए।

मेरे हम सफर हो मेरे हम सफर, लता अमोगेश का ये गाना हमने आप लोग के लिए चला दिया है हमारे सुनने वालों। उसके बाद हम चलते हैं मेरे भूब मेरे महबूब कयामत होगी, फिल्म के नाम है मिस्टर एक्स इन बॉम्बई, नेहा दीन फिर का ये गाना हम आपके लिए चलाते हैं।

मेरे महबूब कयामत होगी, मिस्टर एक्स बम्बई 1964 किशोर जी आप लोग की सुनाए हैं। और किशोर ने अगर महबूब के बारे में सुनाते हैं तो क्यों नहीं मुकेश और लता की ओर हम बढ़ते हैं, जो भी महबूब मेरे के गाना है, पत्थर के सनम 1964 जिसमें मनोज कुमार ने काम किया है दोस्तों।

0: फिल्म पत्थर का सनम, पत्थर के सनम 1967 गाना को हमने निकाला है, जिसमें मनोज कुमार ने काम किए हैं और मुकेश और लता जी इस गाना को और गाया है दोस्तों। और आगे हम चलते हैं, एक दो और मुकेश के गाना हो जाए, फिल्म यादगार की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों,
1: किसी ने आवाज दी और कहा कि मैं भी साथ चलूंगी, तो कदम साथ चले, टेढ़े रास्तों पे साथी का साथ छूट गया, साथी लौट जा, मेरा जीवन तपते हुए रेगिस्तान समान है, मेरा पथ बहुत कठिन है, बहुत टेढ़ा है,

जिसे पद पे चला उस पद पे मुझे, मुझे लता जी फिल्म का नाम है, याद गांठ से इस गाना को हमने निकाल दिया है। हमारे प्यारे सुनने वालों, हम अगला गाना की ओर चलते हैं। मैं जिस दिन भुला दूंगी तेरे प्यार उस दिन क्या होगा, लता और अमित कुमार का ये गाया हुआ ये नंबर हम चलाते हैं।

भाई जिस दिन भुला दूंगी तेरे प्यार उस दिन ये आंखें क्या होगा सुनने वालों आपने खुद ही सुना है। हम चलते हैं ये है दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में शमाई है और ये फिल्म ये मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाएंगे। मुकेश जी का ये गाना है।

दुनिया बनाने वाले क्या तेरी मन में समाई और ये दुनिया काहे को बनाई। मुकेश जी हम जाते हैं और होल्डर बिरमन के सांच में और जब हम जमा होगी फिल्म बेताब का ये गाना नेहत इंद्रियन तख्त का ये सॉन्ग है।

जब हम जवां होगे और जब हम जवां होगे तो तुझे हम याद, तुझे याद हम करेंगे दोस्तों। और ये बहुत देखत इंद्रिय तक का ये फिल्म है, जब हम जवां होगे दोस्तों। और अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं, और हमारा प्रोग्राम पुराने नंबरों की बहार प्रोग्राम यहाँ से चलते हैं, और अपना पुराने गाने की ओर हम बढ़ते हैं और चलते फिल्म अनमोल की ओर। नीखती नीखने शस्त्र का भीगा भीगा बदन और भीगा भीगा बदन, और मेरा चंदन की तरह महकते हैं, फिल्म अनमोल मोती का ये गाना दोस्तों। आओ मिलकर हम सुना जाए।

और क्या दोस्तों, इस गाना बहुत पुराना गाना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, और ये छोटी सी मुलाकात जो है, और ये विजयंती माला उत्तम कुमार का ये गाना है, और ये पुराना गाना हम आपके लिए यहाँ से चलाते हैं।

और छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, और प्यार में क्या क्या हो जाता भैया, छोटी सी मुलाकात में प्यार हो जाए और बड़े मुलाकात में मार हो जाते हैं, होता है ना। और हम प्यार का सौदा कर बैठे विजयंती माला और लता मंगेशकर फिल्म जिंदगी, जिंदगी का ये गाना है निकटिन होंदत और फिर शस्तक का, जिसमें राजेंद्र कुमार राजकुमार विजयंती माला जीवन महमूद हेलेन ने और इसमें काम किया है हमारे दोस्तों।

हम प्यार के सौदा करते हैं। और एक बार दोस्तों और प्रका और ये गाना है ओ राधा तेरी बिना, और ये मस्त भरी गाना है फिल्म राधा का सनम, गोविंदा जुही चावला ने इसमें काम किया है। और आओ मिलके इस गाना को आज हम सुना जाए, ये इसमें कौन सा मजा है दोस्तों।

अपना यही है। ओ राधा तेरे बिना क्या क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों और ये गाना जो हम आपके लिए अब चलाते हैं, ये भी एक बहुत पुराना गाना है, कोई प्यार की देखे जादूगरी। ये भी एक फिल्म है जो अभी हमारा पैदाइश नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन जितनी पुराना ही गाना है उतने मजा उसमें है। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे प्यारे लिस्टनर्स, आओ मिलके और सुना जाए ये क्या है।

कोई प्यार के देखे और जादू भरी दोस्तों। और आगे को बढ़ते हैं कि हैं और दोस्तों ये गाना जो अब हम चलाए जाते हैं ये भी एक पुराना ही गाना है, आई मेरे जिंदगी तू प्यार का सपना फिल्म के नाम है। नेकति होंद नेक ने शस्तक का लता जी इस गाना को गाया है, इस फिल्म में काम किया है विश्वाजीत और मालहा सिन्हा ने दोस्तों, और को अशोक कुमार भी इसमें काम किया है, जॉनी भी काम किया है ना हम जॉनी वॉलकर दोस्तों, हेलेन काम किया है और इसमें कितने लोग काम किया है, आओ मिलके सुना जाए ये कौन सा गाना है दोस्तों।

और खो गया जाने कहाँ जो है, ये एक पुराना गाना है दोस्तों, आओ मिलकर और सुना जाए इसमें क्या है हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों।

0: बड़ी अरमान से लिखा है बलम तेरी कसम। फिल्म मल्हार का ये गाना नेखतिन एन फैफ्तख का, जिसको जिस फिल्म में लता जी और मुकेश जी गाया है। और ये गाना जो अब हम चलाने जाते हैं भैया, ये गाना जो है बहुत पुराना गाना है गीता दत्त शैलेंद्र का, और इसमें हेमंत कुमार ने भी इस गाना को गाया है। दादा हेमंत कुमार ने मुझको तुम जो मिले तब वो क्या हुआ जहां भी मिल गए।
1: माशिनाज मैं बहुत

मिली जहां मिल गई। दादा हेमंत कुमार का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है मालहा सिन्हा ने गीता दत्त के साथ दोस्तों। और ये गाना है तुम तो प्यार हो सजना, और ये फिल्म है भाई शहरा का फिल्म है, और शहरा का फिल्म में क्या कहते आओ मिलके। और

तुम तो प्यार हो हो सजनी। और लता और मोहम्मद रफी जी ये गाना आपको सुनाए, फिल्म शहरा का। ये फिल्म लिखत इंद्रिय से अस्तक का, और ये नया गाना जो नहीं है पुराना गाना लिखत नेखने से अस्तक का है। और मुकेश जी इस गाना को गाया है फिल्म विश्वास का ये गाना। और मिल के सुना जाए हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों।

और दोस्तों चांद की दीवार न तोड़ो और प्यार भरा दिल तोड़ दिया फिल्म विश्वास का ये गाना निहत होने का। और दोस्तों ये भी एक पुराना गाना हम चलाते हैं फिल्म विजयंती माला राजेंद्र कुमार का ये फिल्म है साथी का ये गाना और ये हम यहाँ से रेडियो फाहुन के माध्यम से चलाते हैं हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों और आओ मिलकर सुना जाए कि ये क्या क्या गाते

मेरा प्यार भी तू है और ये बहार भी तू है, फिल्म साथी का ये गाना हमने निकाला है और जिसमें काम किया है विजयंती माला और राजेंद्र ने दोस्तों। और ये गाना है मोहम्मद रफी जी, परमाशी मोहम्मद रफी जी इस गाना को गाया है लक्ष्मीकांत के प्यारे, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ में। और ये गाना है फिल्म दोस्ती का और दोस्ती के गाना उसने सुनना चाहते हैं तो यहाँ से हम चला देते हैं और यहाँ से मेरे दोस्ती मेरे

और दोस्तों मेरी दोस्ती और मेरा प्यार, और इस गाना को मांग किया है और वो है सुरेश हरि प्रसाद भैया है नकन, बर्तन नर्तन धोई के भैया एकदम तैयार है। और बोले जॉनी ये गाना है फिल्म नूर जहां का, ये गाना है आओ मिलकर और हम सब और सुना जाए।